0: राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जिंतलूरू में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India.

माटी के महक नदिया के धार, छत्तीसगढ़ के संस्कृति है अपार। जय जोहार संगवारी हो, मोर माया भरे प्रणाम ला झुकाओ।

तो आज आप मन के साथ हूँ आप मन के रेडियो संगी डिडनेश्वरी यादव। संगी हो लोक रंग लोक सूर और अपन छत्तीसगढ़ माटी के खुशबूले महामहात कार्यक्रम लोक रंजनी में जम्मो श्रोता संगी मन के स्वागत है। संगवारी हो हमर माटी महतारीला बारंबार प्रणाम है, काबर की माटी महतारी के महिमा अपार है। तसुना संगवारी ए लोक गीतला जिला गईन हवाई संतोष शुक्ला और उकर साथी मन अभी गीतला सुनना चाहते महामहा माया चौक मेघा पाराले रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल टेकलाल पटेल रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा धमनी राजिम ले दुष्यंत कुमार बंजारे आशीष कुमार बंजारे सुंदर पारा हासी ले डगेसर राम साहू नूतन साहू गौरव साहू घनश्याम साहू हटरी चौक बिलाई गढ़ले खीकराम देवांगन रजनी देवांगन प्रियंका देवांगन रेनू देवांगन इंदिरा नगर भंवरपुर ले राधेश्याम देवांगन चंपा देवांगन राजू नेहा जगदीश गोविंदा अक्षय कुमार दतरेंगी भाटापारा ले हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा नोखेलाल वर्मा ग्राम गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरदा बाजार ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलौदास जयदास देवेशदास धनवंतीन बाई मोतीमबाई बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन कौशल्य देवांगन हेमलता डिंपल देवांगन बेमेतरा ले भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की सुरेश कुमार सारथी कमलकांत सारथी और मुरली मनोहर पटेल। सुनाओ संगी अपन पसंद के लोकगीतला।

संगी हो, घाम में कुआं के ठंडा पानी पिए ले तन के संगे संग मन ह घलो तृप्त हो जाथे। त संगी हो आवा सुन थन ए लोक गीत ला, जिला गईन हे भरत लाल हरिंद्र आउ दुखिया बाई। ए गीत ला सुनना चाहत हे डोंगरगांव राजनांदगांव ले राष्ट्रपाल गजभी, राधिका गजभी, बेबी अनिष्का तन्मय गजभी, बागभार भदरसी ले पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश ले सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र शाह, नेहरू वार्ड भाटापारले, प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, ग्राम बाघामुड़ा, कोमा खान, छत्तीसगढ़ प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश देवांगन, गात्री यशस्वी, यशवर्धन देवांगन, पीपरपारा, पालचो मुंगेली छत्तीसगढ़, उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, पलारी छत्तीसगढ़ ले नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ले बलकरण वर्मा, अंजनी, राजीव वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर ले राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, बंगला मटिया बालोद ले शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रंबिका, लीना अंशुमाला, शुतोष अंगारे, भरी टोला डॉन्डी बालोद ले नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम, झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ लक्ष्मण वाधवानी, विमला वाधवानी, हर्ष खुशी, शुभम वाधवानी, कन्हैया लाल तीर्थानी, धरसिंहा ले छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाव यादव, रानू खुशी, प्रवीण साहू, सी एल यादव, हटोद बाजार लाहौर ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल औ राजकुमारी पटेल। सुना संगवारी हो ए लोकगीतला जलग गई हमें भरतलाल हरिंद्र औ दुखियाबाई।

संगवारी हो ए सुघर लोक गीत ला सुना जेला गईन हावय पद्मा देवार आई गीत ला सुना चाहते कांदुल अर्जुनदा जिला बालो छत्तीसगढ़ ले मोहनलाल साहू रामकुमार साहू जानकी देवी साहू महेश्वर चांदनी देवी साहू पुनीत राम साहू त्रिशिका उत्तरा देवी साहू मिठमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ ले गिनला शिवास कौशल शिवास बिहारी पटेल लक्ष्मी बरेट लक्ष्मण वाधवानी गेंदू करी भदर बालोदले शारदा निर्मलकर चंद्रिका निर्मलकर जमुना राधा

महेश्वरी लोचन विद्यार्थी गीतिका गुड़िया खमरिया बिलासपुर साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार नानघाट कातल बोल्ले भागसिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत हरदेव लाल पारावाड सिंगाले रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव मुंडा टोला डोंडी लोहारा ले डोमेंद्र नेताम गंगेश्वरी चंचल कामेश माहिर नेताम शिवाजी चौक राजिमले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कृष्ण श्रीवास्तव दरचुराले फिरंता साहू दुलौरिन कामेश्वरी प्रीतम साहू अमरपुर पिंडराले रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी श्रीवास्तव इच्छा महासमनले अदालत दास वैष्णव मानस शांति ऋचा गायत्री भीषण दास मानिकपुरी सुना अपन पसंद के लोकगीतला।

संगवारी हो अगला लोकगीत है जेला गईन है ओला छत्तीसगढ़ के लता मंगेशकर भी कहे जाते। संगी हो का नाम है किस्मत बाई देवार। तस्सुना संगी अपन पसंद के लोकगीत ला किस्मत बाई देवार के स्वर में। एक गीत के फरमाइश करीन है शिंगिरी श्री महानदी सिहा पर वतन चल ग्राम बेलर गांव ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन कभी रेडियो श्रोता संग ले किकिर मेटा बेलहारी पाटन ले संतोष शर्मा रुक्मणी शर्मा गुरामी डोंडी लोहारा बालोद ले पीयूष नेताम जोहमी बाई कोमल नेताम जुनवानी दुर्ग ले सुरीत रमेश नयापारा बेमेतरा ले बनबघेरा जिला राजनांदगांव ले छत्तीसगढ़ ले योगेश शर्मा आशा शर्मा नीरज नीलेश अंजलि शर्मा। यह गीत ला सुना चाहते रामचंद जी देवांगन घासी मामा सलाम युवराज सिंह सुनैना पिंकी रिंकी गीता यश शीतल प्रियांश तन्वी नीता चंद्रपति भागवत देवांगन पद्मलाल देवांगन आओ समस्त परिवार कोष्टापारा जोड़ा चौक सरंगपाल। यह गीत ला सुनना चाहते रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन सिया जैन कल्पना जैन सौरभ जैन शुभम जैन शौर्य जैन सुनो संगवारी हो अपन पसंद के लोकगीत ला।

संगवारी हो यही गीतला सुनना चाहत रही है इंदिरानगर रायगढ़ ले शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन बानो अब्दुल जमीर मोहम्मद अलीम आसिफ और नईम राजा कौशालापारा रायगढ़ ले विनोद कुमार गुप्ता रीना नेहा ईशु और अंशु गुप्ता त संगवारी हो कार्यक्रम ले जाए के बेरा हुआ थे लेकिन जाए ले पहली हमार ईमेल पता ला नोट करो हमार ईमेल पता हवा shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad@gmail.com पत्र लिखे बार हमार पता नोट करा संगवारी कार्यक्रम लोक रंजनी द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ कार्यक्रम लोक रंजनी द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ पिन कोड है 496001 संगवारी हो अब कार्यक्रम लोक रंजनी ले डिडनेश्वरी ला देवाओ बिदा नमस्कार आओ सुनत रहो आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: सियासी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। विधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्वभर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत। अलका याग्निक, अभिजीत की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जुदाई।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नरानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी।

0: समाचार,
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सहित आज से देश भर में लागू हो रही है VBG रामजी योजना। 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में करीब 183 रुपए की कमी की गई। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण

0: योजना आज से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026-27 के बजट में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कल 2 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यवसाय के एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यवसाय के एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपए में मिलेगा। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और अन्य खान पान व्यवसायों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त कर दी है। अब किसानों को पिछले खरीफ वर्ष की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसी समिति में यदि स्टॉक की कमी है तो किसानों को किश्तों में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 MBBS सीटों की मान्यता का नवीनीकरण प्रदान किया है। इससे नए सत्र में 150 विद्यार्थियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, लंबित प्रकरणों के निराकरण, प्रभार व्यवस्था, पुलिस सत्यापन और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है VBG रामजी योजना। 19 किलोग्राम वाले व्यवसायी के एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में करीब 183 रुपए की कमी की गई। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10 बजे है, सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11:00 और पुनः 12:00। 11:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: चिकित्सा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 तोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। आइए जानते हैं शाम को हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। पॉप टाइम का वक्त होगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात होगी वनों को संरक्षित और संवर्धित करने में योगदान करें, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई। साथ ही आप सुनेंगे घटनाचक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे शाम 6:20 पर।

7 बजे और पुनः 8:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी नीलहरी शैवाल किसानों के लिए लाभकारी जैव उर्वरक। आज की नसीहत में आप सुनेंगे इस मास के कृषि कार्य, साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात होगी वनों को संरक्षित और संवर्धित करने में योगदान करें, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई। साथ ही आप सुनेंगे घटना चक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 6:10 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे शाम 6:20 पर, 7 बजे और 8:30 पर। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी नील हरीश शैवाल किसानों के लिए लाभकारी जैव उर्वरक। आज की नसीहत में आप सुनेंगे इस मास के कृषि कार्य, साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये थी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए अभिजीत सावंत को।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी

0: shrotarayagad@gmail.com।
1: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनिए फाल्गुनी पाठक को।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: संदेश से पहले आपने सुना अनुराधा पौडवाल को, और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

तस्वीरों से सजे हर पल, गीतों से महके हर एहसास, आपकी पसंद बने हमारी महफिल की सबसे खूबसूरत बात। इन्हीं सुरीले जज्बातों के साथ आप सभी श्रोता साथियों को डिडनेश्वरी का नमस्कार और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। पेश है श्रोता साथियों आपका अपना प्रिय कार्यक्रम, जहां आपकी पसंद के गीत, आपकी यादों

और भावनाओं को सुरों की मिठास में पिरोकर आप तक पहुंचते हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और लेते हैं पहला ईमेल जो आया है हमारे पास इस वक्त। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव का। साथ ही एक और पत्र हमारे पास है जो आया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। ये सुनना चाहते हैं आशा फिल्म का गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। सुनिए श्रोता साथियों आशा फिल्म का ये गीत।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस वक्त हमारे पास अगला ईमेल है जिसे भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन मंगला, राजेंद्र शाह, लच्छनपुर जिला बलौदा बाजार से रामजी साहू। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पेंगेस्ट का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने और इस गीत को लिखा है मजरू ने, SD बर्मन का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: श्रोता साथियों, अगला गीत सुनिए फिल्म जॉनी मेरा नाम से, जिसे गाया है किशोर कुमार और उषा खन्ना ने। इन दीवान ने गीत के बोल लिखे हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ। ताजपुर मोरवा से कारी राय, मीनाकारी पुंजराचार्यन, आरती पुंज, आकर्षण जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की।

पीतू मोहम्मद फारूक ललन मिश्र ढोली सक्रस जयंत कुमार बैरागी रुआबंधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन कल्पना जैन सेया जैन सौरभ जैन शुभम और शौर्य जैन ग्राम दरचूरा से ददवा साहू भूरी साहू रेखा और मोतीलाल साहू सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं श्रोता साथी आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। अगला गीत सुनिए दयावान फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास ने। अजीज कासी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत परिलाल का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं श्रृंगेशी महानदी सिहाव पर्वतंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश दिवांगन, मधु दिवांगन, हिमांशु और अंकित दिवांगन ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड, गरीब नवाज कॉलोनी, इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक नारायण खर्चे, झूलीलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, विमला वाधवानी, हर्ष खुशी, शुभम वाधवानी और कन्हैयालाल तीर्थानी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोता साथियों, जाने का वक्त हो चला है, तो जाने से पहले हम अपना ईमेल पता बताते हैं ताकि आप सभी अपने पसंदीदा गीत हम तक पहुंचा सके। हमारा ईमेल पता है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिन कोड है 9601। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़, छत्तीसगढ़, पिन कोड है 9601। अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश से दीजिए डिडनेश्वरी को इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।
1: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म ताजमहल की ये कवाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और मीना कुमारी की आवाजों में। साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गजल आप सुन रहे थे अबिनाज मसानी की आवाज में। कतील शिफाई का कलाम था, पेलोडी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल, रफ़ीक हुसैन और रफ़ीक जयपुरी की लिखी ये गज़ल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ।

0: देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।

0: विजु शाह का सर्वधिकीय ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलीशा चिनॉय को आपने सुना एल्बम थी मेड इन इंडिया, अलीशा चिनॉय बिड्डू और श्याम अनुरागी का लिखा ये गीता बिड्डू की तर्ज थी।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।

0: उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: हिंदी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मंजूर सुल्तान परी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

ऐसे कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देव बर्मन का। फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: शोभिन अय्यर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा,

0: बजना है तीन।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार न।

0: की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?

इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके, हो तेरा रंग।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

कुमार बारावंकवी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज़ फिल्म में ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। अब यादों की महफिल, ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आप को लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो,

लेकिन ये गलत फहमियों का जहाँ भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समुंदर जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुशफहमियों का जहां कुछ रहने भी दे, जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाए, जब मोहब्बत के दीप जले, तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबादत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। श्रोताओं, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियां होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखे भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया, और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार गलत फहमियाँ जो होती हैं वो होती हैं और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुशफहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जगदीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियाँ थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियाँ भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुश फहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा, रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुशफहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक, संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात, ताबीरें, बदगुमानी इबारत ऐसे सजी है, इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी, एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दस्तरवाजे, तो देखते हैं। और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, देखते हैं कौन कौन से गीत होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तो जब भी मुस्कुराता है, पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना, चोरी चोरी, चुपके चुपके, शबनम, रेशम की डोर, दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है, चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से, और लाखों हैं निगाह में, इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं, इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती होंगी,

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है? तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है, तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं, बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहाँ खूबसूरत गलत फहमियां ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना, भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियां अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफर, ये एक सफर, कल कौन सी इबारत आएगी, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है, कभी धूप तो कभी छांव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहाँ खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे

होता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है। मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने ऐसा मुझे याद पड़ता है मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल जो गलत फहमियां हैं उन्हें मिटा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है, इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती है कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है, अजब बंदिश अजब आजादी के दरमियान हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, शशि कपूर इस फिल्म में है और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीता। इस फिल्म में बड़ी अजब सी ये गलत फहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाए तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियाँ किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है श्रोताओं। गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियाँ हैं वो और गलत फहमियाँ, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की ज़रूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियाँ रिश्तों में दूरियाँ बढ़ाती हैं, जबकि खुशफहमियाँ मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुशफहमियाँ रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओ, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं, अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलत फहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए, इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समुन्द्र जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर द्वंद्व को भली भांति स्पष्ट कर रही है, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं।

ऐसा होता है कि आप बैठे कहीं और हैं, लेकिन आपको बस वही वो दिखता है या दिखती हैं या दिखती हैं चीजें जिन्हें आप मन में सोच रहे होते हैं। मसलन जब आप समुद्र किनारे बैठे

इस गीत में श्रोताओ और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुश फहमियाँ और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुश फहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में।

नहीं है जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियाँ बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी पर मैं बताना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा हैं, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाएं और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है, और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं। तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है, और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी, और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा, और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीव देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही है जो असल जो चोर है, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ, कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओ कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनों में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलत फहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज थी और श्रोताओं दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी महबूब फिल्म के बारे में कि अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नज़र आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतज़ार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

पालेकर और जरीना बहा पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाज़ें थी यशुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सभी कमेंट्स के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं।

दोस्तों, ईश्वर के बाद जीवनदायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें भी आप

जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में, जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला है, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से

0: माता को हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया।

0: पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement.
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है।

0: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुँचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: एक रात की सुन कही था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।

0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज से मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और भीगने का अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत सच में बारिश जो होती है ना, एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की।

0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
1: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें, या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
0: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
1: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
0: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
1: बिल्कुल। लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
0: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड को अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया, अब हम भी अच्छा करेंगे। एक होती है कि उसने कैसे किया,
0: मैं करके
1: पीछे खींचे। हाँ। तो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में,
0: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: है ना, और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है, वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
1: और पीछे भी खींचती है।
0: पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे,
1: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
0: अच्छा,
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं, उनकी राय मांगते हैं। फिर वो जब कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे हम बात करेंगे।
0: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है? कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया?
1: जी बिल्कुल, आप बताइए।
0: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले। और
1: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत कर
0: व्यंजन लेके आई
1: है। जी बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ, और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना, उसके साथ पकौड़ों की
0: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा। तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं? कई तरह के पकौड़े,
1: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
0: कौन से बेसन के, और
1: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच के कल्पना करके उसको हम खा लें।
0: नहीं भी, हमारे लिए भेजेंगे हमारे सिक्योर सका और हम उसे खा भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं।
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: ये एक एक जो चीज होती ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते।

0: सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं। तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ, वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है। तो वो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है। तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीज़ें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
1: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल। और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं। कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर समय नहीं।
0: बिल्कुल, अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं। और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन
0: फ्रूट खाएं। ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ रहें।
1: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा?
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था। और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे। और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या

0: मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक, हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
0: और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज़्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज़्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बिना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी है। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या टसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग की चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की ज़रूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। ये
1: बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना?
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली हैं।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ। वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास

0: का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारी श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कॉम्पिटिशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वही श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रति

0: करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: निकल जाएं। ये तो जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल,
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
1: प्रतियोगिता में
0: चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
1: मजा आता है। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता,
0: बस अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे, मन के जीते जीत जी। अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें,
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाक नहीं जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात,
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार।
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल। इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए। मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े उस पर एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आंच पर दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताइए, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आरती जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
0: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके है ना।
0: मैंने कहा ना
1: बारिश होते ही कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक

0: तो श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी, टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है, भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है, है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना, आती बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर, मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा, घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गरम होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा, उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें। अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें। धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गरम करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
1: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहाँ से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा,

0: ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं। ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
1: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था। हरशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
0: अच्छा।
1: धर्मयुग कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था। पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1,00,000 से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
0: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
1: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
0: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
1: जी,
0: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया। लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
0: जी,
1: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं नकारात्मकता को दूर करके।
0: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
0: उसका आकाश
1: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
0: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
1: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियाँ मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
0: जी,
1: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
0: जी।
1: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
0: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
1: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
0: जी।
1: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
0: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
1: जी,
0: मिला
1: जी।
0: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है। जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है, ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए, तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी

0: इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया
1: जी।
0: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह महाराजा गिद्धों का स्वर्णकाल, इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना
1: जी,
0: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का
1: जी,
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे
1: जी।
0: तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है, अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य सनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है, इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा, बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का सनिदेव। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सनिदेव में मिलेगी
1: जी। तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है, कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे, अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था पाठक का,
0: हाँ बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी, अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं।

0: है तो थोड़ा सा एक चुनौती बड़ी है कि बैंक को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है
0: जी
1: और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है।
0: जी
1: अब कितना वो व्यंग्य है कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं,
0: जी
1: हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और
0: जी
1: लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
0: जी
1: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ
1: जी
0: और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन
1: मन
0: मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें
0: तेरा।
1: तेरा, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम हैं, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी,
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी,
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज़्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि व्यंग में उपन्यास काफ़ी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं हो पाया। जी,
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास

0: लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग्य लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएँ हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है
0: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है,
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
0: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश
1: जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच
0: जी। जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है?
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं।
1: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग्य, मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग्य का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग्य एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है।
1: जी।
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है, इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है। उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग्य जाएंगे तो अच्छे व्यंग्य पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग्य जाएंगे, खराब व्यंग्य की श्रेणी में मैं उन व्यंग्य को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग्य नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग्य लेखन कर रहे हैं। व्यंग्य हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग्य प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंग्यकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूँगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुँचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुँचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा,

0: की शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के ज़माने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज़ तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
1: जी जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
0: जी,
1: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है, तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
0: जी मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
1: जी,
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थे।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी जी,
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत, यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता
1: नहीं।
0: है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप
1: है ना,
0: निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी जरूर।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुँच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुँचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस ज़माने में यात्रा संस्मरण की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहाँ वो जिस जगह पे गया है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़ें तो आपको सूचनाएँ तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूँ
1: जी,
2: और वहाँ पर जा करके मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहाँ के जन समुदाय को, वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है

0: और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया, जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं, और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है। प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है।
1: जी
0: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन हाँ, दृष्टि और पांव। दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है? क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहाँ आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहाँ आपने दर्शन किया वहाँ का जीवन दर्शन क्या है, इस चीज़ को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीज़ों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीज़ों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी में मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहां फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी,
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये पड़ौली, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, ढेकी डोली, एरंड, नवापारा, घड़गांव, बरडांड, दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये अम्बाचुआ, जामटोली, टुकुपानी, बोडालता, कूड़े केला, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये कूड़े केला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोड़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट, FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर आप सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी का समय होगा संध्या 5:30। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा वनों को संरक्षित और संवर्धित करने में योगदान करें। साथ ही सुनिएगा क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:05 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:00। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नील हरि सहवाल किसानों के लिए लाभकारी जैव उर्वरक, सुनिएगा नसीहत इस मास के कृषि कार्य। गैर फिल्मी गीत सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। रात्रि 9:00 सुनिएगा विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण। फिल्म संगीत रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। कार्यक्रम पॉप टाइम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शान के गाए हुए इस पॉप गीत को।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी सही।

दादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं अनिक के गाए इस पॉप गीत को। रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत जतिन शर्मा का।

अदनान सामी के गाए हुए इस पॉप गीत के साथ ही कार्यक्रम पॉप टाइम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिशा यादव और मैं एक बार फिर हाजिर हूं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों की कीमत जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी असली कीमत हमें तब समझ आती है जब वे हमसे दूर होने लगते हैं। जंगल भी उन्हीं में से एक है। आज हम तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हरियाली पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन पेड़ों की छांव कम होती जा रही है। सड़कें चौड़ी हो रही है, लेकिन जंगल छोटे होते जा रहे हैं। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट की इमारतें हों, ना कहीं पेड़ों की हरियाली दिखाई दे, ना पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे, ना ठंडी हवा का कोई एहसास हो, गर्मी इतनी हो कि घर से बाहर निकलना मुश्किल लगे, बारिश समय पर ना आए और सांस लेने के लिए भी शुद्ध हवा ना मिले, क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे? नहीं, कोई भी ऐसी दुनिया में रहना नहीं चाहेगा। पर हम मनुष्य आधुनिकीकरण के नाम पर ऐसी दुनिया के ही निर्माण पर लगे हुए हैं। आज हम मानव हर तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं और वनों की कटाई कर रहे हैं। दोस्तों, जंगल किसी की गलती के वजह से नहीं, बल्कि हमारी बढ़ती ज़रूरतों और हमारी विलासिता की वजह से कट रही है। बढ़ती आबादी के वजह से नए घर बनाए जा रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, खड़े बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। खेती का क्षेत्र बढ़ने के लिए भी जंगल साफ किए जा रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी, फर्नीचर, कागज और दूसरे व्यावसायिक कामों के लिए भी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की जाती है। विकास ज़रूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति को ही खत्म कर दे, वो आने वाले समय में हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन क्या जंगल काटकर हम सच में आगे बढ़ रहे हैं, या अपने ही भविष्य को पीछे ढकेल रहे हैं? दोस्तों, हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि धरती में जीवनदायिनी का काम करती है। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण का तापमान संतुलित रखते हैं और बारिश के चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे धरती का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। वनों की कटाई का सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ता है। पेड़ कम होने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन तेज हो जाते हैं। गर्मियाँ पहले से ज़्यादा लंबी और तेज हो जाती है। बारिश कभी बहुत ज़्यादा होती है तो कभी बिल्कुल नहीं होती। सूखा, बाढ़ और हीटवेव जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगती हैं। इसका असर सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि हम सभी की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। शुद्ध हवा कम होने से सांस संबंधी बीमारियां बढ़ती है, पानी के स्रोत सूखने लगते हैं, खेती प्रभावित होता है, जंगलों के नष्ट होने से पक्षियों और जानवरों का घर उजड़ जाता है, भोजन और रहने की जगह न मिलने की वजह से वे शहरों की ओर आने लगते हैं, जिससे इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती है। जब जंगल काट दिए जाते हैं तो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और पथरीली ज़मीन बच जाती है। कई जगह भूस्खलन जैसी घटनाएं भी होने लगती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि पेड़ काटना बहुत आसान है, लेकिन एक घना जंगल बनने में कई दशक लग जाते हैं। हम जो एक पेड़ आज काटते हैं, उसकी भरपाई शायद आने वाली पीढ़ियाँ भी पूरी तरह ना कर पाए। दोस्तों, अक्सर हम में ये थिंकिंग होती है कि जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की या वन विभाग की है, लेकिन सच तो ये है कि अगर हर नागरिक अपनी छोटी जिम्मेदारियां निभाने लगे तो वनों को बचाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पौधे को सिर्फ उगाकर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी देखरेख करनी चाहिए ताकि वो पौधा पेड़ का रूप ले सके। हमें बिना वजह

पेड़ों की कटाई का विरोध करना चाहिए। अगर कहीं अवैध रूप से जंगल काटे जा रहे हैं तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को जरूर पहुंचानी चाहिए। हमारी एक छोटी सी जागरूकता भी सैकड़ों पेड़ों को बचा सकती है। कागज और लकड़ी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। जितनी कम बर्बादी होगी उतनी ही कम पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ेगी। आज के समय में कई काम डिजिटल माध्यम से भी किए जा सकते हैं, इसलिए जहां संभव हो कागज का कम उपयोग करें। हमें जंगलों को आग लगने से भी बचाना चाहिए। जंगल में आग जलाने से बचें और अगर आग जलाते भी हैं तो आग को पूरी तरह बुझाएं। ज्वलनशील वस्तुओं को जंगल में ले जाने से बचें। अगर जाने अनजाने में या हमारी लापरवाही से जंगल में आग फैल जाने की वजह से कई पेड़ों और जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। जब समाज जागरूक होगा तभी जंगल सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वनों का हमारे जीवन में महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पेड़ पौधों के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और वनों की कटाई रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, इसलिए जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं। अपने बर्थडे या ऐसा दिन जिस दिन को आप स्पेशल बनाना चाहते हैं उस दिन एक पेड़ ज़रूर लगाएं और अपने स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाएं। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के हमारे क्रम में और सुनते हैं क्रम तरुणों की पसंद में आप श्रोताओं के पसंदीदा गीत। तो आइए सुनते हैं हमारे श्रोता साथी ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू की पसंद का फिल्म राजा का ये गीत। अलका और उदित की आवाज़ों में गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्रम की ओर, जिस क्रम में होता है ज्ञान का भंडार और सभी हमारे श्रोता साथियों को रहता है हमारे इस क्रम का इंतजार, जिसमें हम आप सभी श्रोता साथियों तक देश दुनिया और खेल जगत से जुड़े खबर पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रम घटना चक्र की, तो आइए शुरू करते हैं क्रम घटना चक्र।

सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान समेत 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 26 जून को तमिलनाडु के कल्पकम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR में दुनिया की पहली परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक सुविधा कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित है और इसे आवश्यक ऊष्मा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त होती है। एरोस्पेस इंजीनियर एन जयन इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए निदेशक बने। उन्होंने LVM3 रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने में काम किया है। वे पहले नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक भी रह चुके हैं और उन्हें 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी मिल चुका है। जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को 31वें थल सेनाध्यक्ष का पद संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है। सेठ NDA के पूर्व छात्र हैं और 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन हुए थे। वे उप सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी कमान संभालने का अनुभव

भाव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को आयुष्मान सारथी नामक पीएम जय का व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया। अब आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी व्हाट्सएप के जरिए 24 घंटे सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके जरिए लाभार्थी पीएम जय की पात्रता जांच, नया आयुष्मान कार्ड बनवाना, कार्ड डाउनलोड, EKYC, आधार लिंक, कार्ड लॉक अनलॉक, इलाज का रिकॉर्ड और वॉलेट बैलेंस चेक कर पाएंगे। आइए खेल जगत से जुड़े खबरों की ओर बढ़ते हैं। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने जुलाई 2011 से हर साल FIDE रेटिंग लिस्ट में लगातार 15 साल तक दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। वे 2009 के बाद से कभी 2800 रेटिंग के नीचे नहीं गए हैं। वर्तमान में कार्लसन की रेटिंग 2823 है और वे फैबियानो कारुआना और हिकारू नाकामुरा से 31 अंक आगे हैं। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। रोनाल्डो और लियोनेल मेसी 6 विश्व कप खेलने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। भारतीय जूनियर पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टीम ने इतिहास रच दिया। चीन में आयोजित जूनियर एशियाई चैंपियनशिप के टीम इवेंट में भारत ने पहली बार कांस्य पदक जीता। ये इस टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वर्ल्ड स्पर्धा में हर्षित दामोदरन ने स्वर्ण और दक्षत बजाज ने रजत पदक जीता। चेन्नई के 22 वर्षीय हर्षवर्धन जी भी भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने चोला चेस GM नॉम टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम GM नॉम हासिल किया। वे 2020 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे, 2021 में फिडे वर्ल्ड यूथ अंडर 18 और 2022 में एशियन जूनियर ने स्वर्ण पदक जीता। छत्तीसगढ़ में पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर शुरू होने जा रहा है। इसे बिलासपुर के बहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना के तहत इसके लिए बजट मंजूर हो चुका है। दोस्तों, क्रम घटना चक्र में बस इतना ही। अब समाप्त होता है क्रम घटना चक्र।

दोस्तों आइए क्रम तरुणों की पसंद में हमारी अगली प्रस्तुति सुनते हैं फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत। मुकेश और लता की आवाज़ों में गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन है कल्याण जी आनंद जी के। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल और रेखा देवी श्रीवास्तव।

दोस्तों, आइए क्रम तरुणों की पसंद में हमारे श्रोता साथियों छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा की पसंद का फिल्म अंधा कानून का ये गीत सुनते हैं। किशोर का गाया हुआ ये गीत, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: दोस्तों, इसी तरह हमें आप पत्र लिखते रहें और अपने पसंदीदा गीतों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, हमसे पत्र व्यवहार करने के लिए हमारा पता
1: दोस्तों इसी तरह हमें पत्र लिखते रहें और अपने पसंदीदा गीत सुनते रहें। दोस्तों हमसे पत्र व्यवहार करने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है क्रम तरुणों की पसंद युवाड़ी प्रभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। पिन कोड है 496001। दोस्तों इसी के साथ ही आप हमें हमारे पते पर ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shrotarayagad@gmail.com। दोस्तों अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। अपनी रेडियो दोस्त रेशा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।
2: युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण अभी हो रहा था। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। थोड़ी देर में समाचार होंगे।
3: केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
4: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली

0: है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साह ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। एक नज़र करके कार्यक्रमों पर, कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय होगा 6:10। कृषि चर्चा 6:30 पर। रामचरित मानस का प्रसारण समय होगा 6:40। देश गान हम आपको सुनाएंगे 6:50 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। 7:35 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा, जिसमें विषय होगा एक पेड़ एक जिंदगी, आओ मिलकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मादर 7:45 पर 8:30 पर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुबह 9 बजे 9:55 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार और प्रादेशिक समाचार का पुनः अनुप्रसारण किया जाएगा रायपुर केंद्र से 11:55 पर। लोक संगीत 10:10 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 11 बजे से 11:55 तक और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। कल शाम 5 बजे तक 5 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट, कार्यक्रम शाम में गजल हम आपको सुनाएंगे 5:10 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का वक्त होगा संध्या 5:30, हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6 बजे 6:10 पर सुनेगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर और पुनः फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में इसे आप सुन पाएंगे रायपुर केंद्र से यह अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम 6:45 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा किसान वाणी, कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अपनी आमदनी बढ़ाएं, खेती में उन्नत किस्में अपनाएं, सुनेंगे नसीहत किसानों की समृद्धि का आधार किसान क्रेडिट कार्ड। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण रात्रि 9 बजे, विविध संगीत रात्रि 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। संध्या के 6:10 हुए हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। ये विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू, इमा 125 दिन के रोजगार के गारंटी होही। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहल ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू, और 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर के दाम मा 183.50 रुपया की कमी, आज ले नवा दर लागू। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू हो गए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है कहीन कि वीबी जी राम जी अधिनियम में अवैया ग्रामीण परिवार ला हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार के गारंटी होही। एखर ले ग्रामीण भारत सशक्त बनही, वर्तमान वित्तीय बछर में ए योजना ला चलाए बर

0: 95,692 करोड़ रूपया के प्रावधान करे गए हे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम मा अवैया संशोधित पारिश्रामिक दर आज ले लागू हो गए हे। राष्ट्रीय औसत पारिश्रामिक मनरेगा के 258.80 रूपया ले बढ़ा के विकसित भारत राम जी माँ अवैया 327.40 रूपया रोज के कर देगे हे। ऐसने पारिश्रामिक दर मा 10 ले ज्यादा के औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मा जहां पहली मजदूरी 300 ले कम रही उन्हें अब नवा दर लागू हो गए हे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होयला एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताए है। श्री चौहान हा कहिन कि ए अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिक मन बर गरिमा आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करे के नवा अध्याय है। उमन कहिन कि ए अधिनियम गांव के हर एक परिवार ला 125 दिन के रोजगार के वैधानिक अधिकार देते। तेल विपणन कंपनी हा 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम मा 183.50 रूपया के कमी करे हे। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नवा दर आज ले लागू हो गए हे। एक कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली मा 2,930 रूपया मा मिली। ए फैसला ले रेस्टोरेंट ढाबा होटल और आने खान पान के व्यवसायी मन ला लाभ मिली। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहर ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू हो गए हे। अब उपभोक्ता मल्ला प्रति यूनिट 30 ले 50 पैसा ज्यादा बिल देना होही। गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर मा 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट बढ़ोती हुए है। उन्हें कृषि पंप के दर 40 पैसा प्रति यूनिट महंगा करे गए है। एक संग नवा टैरिफ मा कतकोन बदलाव करे गए है। एमा बिजली बिल के पहली भुगतान करे जाए मा 1.25% छूट ला घटा के 0.75% कर देगे है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग हा शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूल मा काम करैया पात्र शिक्षक मन के शिक्षा सत्र 2026-27 के आखिरी तक पुनर्नियुक्ति दे के स्वीकृति जारी करे हे। एमा सहायक शिक्षक ले लेके प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल हे। लोक शिक्षण संचालनालय ला निर्देश दे गए है कि सबो जिला मा जरूरी कार्यवाही जल्दी पूरा करे जाए। बीमित मनखे मन बर बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज ले अवैया बछर 30 जून तक बढ़ा देगे हे। एकरे संग नवा ईएसआई अस्पताल के प्रबंधन अब सीधा निगम डहार ले करे जाही जेखर ले उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करे जा सके। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आज 11 बछर पूरा हो गए हे। ए पहल ले देश भर मा नागरिक ले जुड़े सीखे लेन देन करे और सरकारी सेवा के लाभ उठाए के तरीका ला बदल दे हे। पाछू 11 बछर मा भारत हा दुनिया के सबले बड़का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम ला एक तैयार करे हे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहे हे कि डिजिटल इंडिया अभियान हा सुशासन ला नवा दिशा और देश के सबो विकास काम ला गति दे हे। उमना कहिन हे कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिया ले सरकारी सहायता पारदर्शिता के संग सीधा लाभ पवैया मंत्री पहुंचा थे। उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाघलो आज 10 बछर पूरा हो गए है। ये योजना 1 जुलाई 2015 के शुरू करेगी रही। ये योजना सिंचाई में सुधार सतत जल प्रबंधन और कृषि भूमि ला सिंचाई के दायरा में ला के खेती में बड़का बदलाव लाए में मददगार साबित हुई है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाए जाते। ये दिवस जन स्वास्थ्य के रक्षा के प्रति डॉक्टर मन के समर्पण और योगदान ला दिखाते। ये दिन हर बछर 1 जुलाई के डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती और पुण्यतिथि के याद में मनाए जाते। ये बछर के विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मा देश के सबो डॉक्टर मन ला शुभकामना दिन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मा आज छत्तीसगढ़ मा घलो आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। गौरेला पेंडा मरवाही जिला मा स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर मा अधिकारी और कर्मचारी मन बर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन करेगी। शिविर मा 55 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के स्वास्थ्य

0: के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामिल ही उन्हें कार्यक्रम के अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण सावकर ही समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सबो नवनिर्वाचित पार्षद पद और गोपनीयता के शपथ ली। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग धमतरी जिला में एक और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थापना ला मंजूरी दे दे है। एक नवा एकलव्य विद्यालय में छात्र छात्रा के विकास पर विश्व स्तरीय सुविधा मुहाये करे जाही। संगे संग विद्यार्थी मन ला नीट जेईई और क्लैट जैसन राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षा पर अनुभवी शिक्षक मन डहा ले विशेष कोचिंग और कैरियर काउंसलिंग दे जाही। नवा संस्थान के शुरू हो जाए ले जिला के दुर्गम और वन क्षेत्र के होनहार आदिवासी विद्यार्थी मन ला आधुनिक उत्कृष्ट और निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिल सकी। जानबा के मुताबिक जिला के नगरी विकास खंड के पथरीडी में पहली ले एक आदर्श विद्यालय संचालित है। कांकेर जिला में भानु प्रतापपुर पुलिस और एंटी पोचिंग टीम हा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा में वन्य जीव तस्करी के नेटवर्क के खुलासा करे है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वन विभाग और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में दो बाघ के खाल के संग दो आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे गए है। जांच में आरोपी मन तिल्ले पेंगोलिन के शल्क घलो बरामद करे गए है। दोनों आरोपी पुलिस विभाग ले जुड़े बताए जावत है। अब थोरकून समाचार सारमा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर ला शैक्षणिक सत्र 2026-27 बर 125 MBBS सीट बर मान्यता के नवीनीकरण प्रदान करे है। राज्य शासन हा श्रम विभाग मा 11 अधिकारी के स्थानांतरण के आदेश जारी करे है। सबो अधिकारी मल्ला प्रशासनिक दृष्टिकोण ले अवैया आदेश तक नवा पद स्थापना दे गए है। उन्हें 33 जिला मा जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के घलो तबादला करे गए है। कोंडागांव जिला के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB हा स्टेनोटाइपिस्ट के नामांतरण के मामला में एक किसान ला 10,000 रुपया की रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। रायगढ़ जिला के गढ़घोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग के टीम हा कुरकुट नदी ले रेत के अवैध परिवहन करत 12 ट्रैक्टर ला जब्त करे गए है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर मा लागू। एमा 125 दिन के रोजगार के गारंटी होही। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहर ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू और 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर के दाम मा 183.50 रुपया के कमी आज ले नवा दर लागू। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 MHz पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में MG हशमत और जुगल किशोर के लिखे हुए इस गीत को। संगीत है तिलक राज का। फिल्म का नाम भीगी पलकें।

0: सोम मंग
1: आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: अच्छा दादा।
0: हाँ तो बच्चों,

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,

कार्यक्रम में जो गीत अभी आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म अमृत से। आवाज़ें किशोर कुमार और साथियों की थी, आनंद बख्शी की शब्द रचना थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं।

0: जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए अब हम आपको सुन पा रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार के स्वर में इंदिवर की शब्द रचना को। संगीत है राजेश रोशन का। फिल्म का नाम आखिर क्यों।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए, अब हम आपको सुन पा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में जावेद अख्तर के लिखे हुए इस गीत को। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम 1942, ए लव स्टोरी।

0: कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के

0: सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबीजी रामजी अधिनियम आज से देश भर में लागू, इसके तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू। रेलवे ने दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को दी मंजूरी। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की गई। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लागू हो गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर को 261 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस तरह से मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।
6: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी, बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
5: श्री चौहान कल 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकास खंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25% छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थीं। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डिवीजन के अंतर्गत दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को मंजूर

0: मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 13 स्टेशनों पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से बदला जाएगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 55 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य भी शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्यवाही जल्द पूरी की जाए। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कल 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद तथा गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्य शासन ने कोरिया जिले के सोनहत इलाके में बहुचर्चित नवगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि बीते 16 जून को नवगई निवासी भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह सहित नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने महिला कार्यकर्ताओं के लिए बूथ स्तर तक डिजिटल प्रशिक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास, नमो ऐप के उपयोग और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर स्थित बांदे परिक्षेत्र में एंटी पोचिंग टीम ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्य जीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 बाघों की खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आरोपियों के पास से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी पुलिस विभाग से जुड़े बताए जा रहे हैं। कोरबा जिले में कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरीकला में आज 3 नकाबपोश लुटेरों ने सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार ये नकाबपोश एक मोटरसाइकिल से ग्रामीण बैंक के पास स्थित ज्वेलर्स दुकान पहुंचे और दुकान संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी एमबी पटेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश स्थानों में कल हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक इस मानसून के दौरान मौसमी वर्षा सामान्य से 60% कम दर्ज की गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104,54,00,000 रुपए से अधिक की राशि जारी की है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 MBBS सीटों की मान्यता का नवीनीकरण प्रदान किया है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने धमतरी जिले में एक और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने स्टेनोटाइपिस्ट को नामांतरण के एक मामले में किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कुरकुट नदी से रेत का अवैध परिवहन करते 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। VBG रामजी अधिनियम आज से देशभर में लागू। इसके तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू। रेलवे ने दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को दी मंजूरी। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश भाटकर के युगल स्वर में हसरत जयपुरी के लिखे हुए इस गीत को। इसे सुरों में ढाला है रविंद्र जैन ने। फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत बेमिसाल। आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

खबर अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है।

0: बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह और साथियों के स्वर में फिल्म बहार आने तक का ये गीत। इंदिवर ने गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने।

अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 7:20 होने को हैं। आइए सुनते हैं कृषक भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम चौपाल सुनैया जम्मू संगी संगवारी मन ला मुकेश चतुर्वेदी के राम राम जय जोहार संगवारी हो संझा के बेरा और चौपाल के बैठके माँ आप जम्मू सुनैया संगी संगवारी मन के स्वागत हावे। तो भैया हो आज दिन हो इस बुधवार और महीना के शुरुआत हो इस यानी एक तारीख हो इस अब एक तारीख के आज आनी बानी के दिन है दिवस है शुरुआत करण अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है काबर की रोज खाए एक फल स्वस्थ रहेगा आपका कल। एकर अलावा संगवारी हो आज वन महोत्सव सप्ताह के शुभारंभ हुआ थे जो नर की एक तारीख ले सात तारीख तक चलते। संगे संग चिकित्सा की प्रणेता डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की जयंती भी है पुण्यतिथि भी है काबर की आज मनसे के स्वास्थ्य रक्षा जोन करते हैं डॉक्टर मन के डॉक्टर्स डे भी मनाया जाते थे। एकर अलावा संगवारी हो पुरुषोत्तम दास टंडन जी की पुण्यतिथि है और चर्चा करबो आकाशीय बिजली से बचाव के आवश्यक उपाय काबर की बरसा दिन चला थे और ज़्यादातर हमन समाचार पत्र के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम ले हम पता चलते कि बिजली तड़क गए तो वहाँ मवेशी मन खत्म हो गए इनकी मनसे मन खत्म हो गए इनकी कोनो प्रकार के घटना दुर्घटना हो गई ये सब आज के चर्चा में है। आज के बाद जो हमारे कार्यक्रम के नियमित क्रम होते संगवारी हो में आज हम चर्चा करबू नील हरित सहवाल किसानों के लिए एक लाभकारी जैव उर्वरक। एकर अलावा आज के नशीहत महामन गोट करबो इस मास के कृषि कार्य कृषि दिवस के रूप में है ना और संगे संग में आज के टिप में हमन चर्चा करबू कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग अपनाएं। ओकर बाद आज के किसान के क्रम में हम आप लेके जाबो भेंट कराबो ग्राम जुड़ा विकास खंड रायगढ़ के कृषक हैं गणेश ठाकुर जो मुनगा की व्यवसायिक खेती कर रहे थे वो भी जैविक तकनीक ले जैविक विधि ले ये विषय में मैं यानी मुकेश चतुर्वेदी बात करे हूँ ओला आप हम सुनाबू। तो भैया हो देखा तो शुरुआत करन आज के दिन तिथि और दिवस के ऊपर में और दिवस ऐसे है कि आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है तो जाहिर से बात है कि फल के महत्ता के गुणगान तो होबेच कर ही। भैया हो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस हर साल 1 जुलाई के दिन दुनिया भर में मनाया जाते अब ये दिन के मुख्य उद्देश्य थे लोगन मनला फल

कि जो मनसे के स्वास्थ्य में कदक फायदेजनक है उकर प्रति उकर लाभ के प्रति जागरूक करना, इकर अलावा संतुलित आहार ला बढ़ावा देना और सामुदायिक भावना के साथ फल ला साझा करके खुशियाँ बांटना। इकर अलावा अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस ले जुड़े मुख्य बात यह है कि इकर शुरुआत हो रही से पहली बार वर्ष 2007 में जर्मनी के बर्लिन में मेयर पार्क में और मनाए के तरीका एक ये ऐसे रहते कि ये दिन लोगन मन एक दूसर ला अपन पसंदीदा फल भेंट करते जोन ला स्कूल कार्यालय और सामाजिक संस्था मन में लोगों के लोगन मन के संग में बैठ के मनाया जाते। उद्देश्य कर ये होते कि प्रसंस्कृत और अस्वस्थकर खाद्य पदार्थ जोन हर कि आजकल के फास्ट फूड वगैरह जंक फूड वगैरह मन के चलन बढ़ गए है तो ओकर बीच में मनसे अपन स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, खान पान के आदत ला परिवर्तित करे और फल फ्रूट खाए के आदत ला प्रोत्साहित करना है। अब ये पारी के आज के दिवस में जो थीम है संगवारी हो वो हर है 2026 बर खजूर। ये वर्ष के फल चुनेगी से और एक थीम पौधा लगाओ सीखो जश्न मनाओ है। देखा कतक सुग्घर थीम भी है ना, पौधा लगाओ सीखो जश्न मनाओ। हम इनके विषय भी है कि आओ मिलकर पेड़ लगाएं धरती को स्वर्ग बनाएं, यानी कि वन महोत्सव सप्ताह घलो चलत है। तो भैया हो देखा आनी बानी की जो चीज है संसार में जुन्मन की उपलब्धि है जुन्मन ला की आसानी से किया जा सकत है, तो ऐसे बहुत सारा चीज मन है जो नहर के हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। और खास करके हम तो खेती किसानी वाला मनसे, तो जैसे आज के चर्चा के विषय है हमारे के नील हरित शैवाल किसानों के लिए लाभकारी जैव उर्वरक। भैया हो अभी पाछू महीना हमन चर्चा करते हैं खेत बचाओ अभियान जो में कि खाद उर्वरक जैविक तकनीक जैव उर्वरक और प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़े, ये भी समय चर्चा करते रहन। तो भैया हो नील हरित शैवाल किसान मन पर एक लाभकारी जैव उर्वरक होइस। नील हरित शैवाल यानी बीजीए हर मुख्य रूप ले धान के फसल पर एक अत्यंत प्रभावी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाते और ये हर वातावरण के नाइट्रोजन ला माटी में स्थिर करके पैदावार ला बढ़ाते, खाद उर्वरक के खर्चा ला कम करते। और नील हरित शैवाल हर स्वतंत्र रूप ले पाए जाने वाला एक जीवाणु हुई जो नर की पेड़ पौधा का प्रकाश संश्लेषण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन ला माटी में स्थिर करके काम करते। अब ये नील हरित शैवाल ला अंग्रेजी में कहते हैं साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते, संगवारी हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं साइनो बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते। अब ये हर कोशिकीय जीवाणु होते और शैवाल के आकृति के होते, तो ये नील हरित शैवाल के उपयोग की विधि और लाभ के विषय में अगर गोट करन हमन तो ये हर हवा ले नाइट्रोजन खींच के पौधा ला उपलब्ध कराते जेखर ले रासायनिक यूरिया के खपत लगभग 25 से 30% कम हो जाते और एक उपयोग के मात्रा रोपाई के लगभग 7 से 10 दिन बाद में प्रति एकड़ खेत में 4 किलोग्राम नील हरित शैवाल कल्चर के छिड़काव करना चाहिए। फिर धान के खेत में पानी भरे रहे ले ये शैवाल हर तेजी ले बाढ़ते और पूरा खेत में फैल के माटी के उपजाऊ क्षमता में सुधार करते। इकर अलावा माटी में कार्बनिक पदार्थ के मात्रा ला भी बढ़ाते और भूमि की स्वास्थ्य ला लंबा समय तक बनाए रखते। भैया हो धान के खेत में ये नील हरित शैवाल ला खेत के नम स्थिति में आसानी ले उगाए जा सका थे। इखर ले पौधा हर सस्ता वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करके माटी ला जीवंत उपजाऊ उत्पादक बना के फसल की पैदावार ला बढ़ाते। देखा हमन कथन इहर काई है मामूली लेकिन ओकर कतक ज्यादा महत्व है और कतक ज्यादा फायदेजनक है। तो भैया हो नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एलएच बीजीए मुख्य रूप ले धान चावल के खेती में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी जैव उर्वरक बायोफर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाते। अब ये वातावरण के नाइट्रोजन ला माटी में स्थिर करके पैदावार ला बढ़ाते, संगे संग खाद उर्वरक के जो खर्चा रहते वह भी कम करते। नाइट्रोजन की पूर्ति यानी कि हवा ले नाइट्रोजन खींच के पौधा ला उपलब्ध कराते जिसके लिए रासायनिक यूरिया के खपत हमन के कम हो जाते। और भूमि सुधार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर माटी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ला बढ़ाते, भूया में स्वास्थ्य रखे

0: लंबा समय तक बनाए रखते, और नील हरित शैवाल धान के खेत में विषम परिस्थिति में भी यानी नमी जो हल्का सा रहते तेहू में भी आसानी ले उगाया जा सकता है, जेकर लिए पौधा बहुत सस्ता वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करके माटी ले जीवन उपजाऊ उत्पादक बना थे। इकर अलावा एकर इस्तेमाल ले फसल के उत्पादन लागत में भी कमी आ थे। किसान नील हरित शैवाल बहुत आसानी ले अपन खेत में तैयार कर सकते हैं, चाहे तो अपन आय के अतिरिक्त तो स्रोत भी बना सकते हैं, तैयार करके अन्य किसान मन बिक्रय भी कर सकते हैं। भैया हो नील हरित शैवाल स्वतंत्र रूप ले पाया जाने वाला एक जीवाणु भूस और मुख्य रूप ले धान के फसल में अगर ज़्यादा उपयोग होते धान के फसल में नील हरित शैवाल के प्रयोग करे ले न सिर्फ पैदावार बढ़ते बल्कि धान के कटाई के बाद में बोए जाने वाला रबी के फसल पर भी नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व की पूर्ति हो जाते, काबर की माटी में पहले ले उपलब्ध अवस्था में उपस्थित पोषक तत्व ले बीज के अंकुरण और फसल के बढ़वार अच्छा होते। ये प्रकार ले नील हरित शैवाल के उपयोग तत्कालिक और दूरगामी लाभ दोनों प्रकार ले किया जा सका थे। यदि कोनो खेत में लगातार 3-4 साल तक ये जैविक खाद के उपयोग किया जाए तो आगामी कई साल तक माटी ला शैवाल से उपचारित करने की जरूरत नहीं पड़े, काबर की माटी की उर्वरा शक्ति हर हमेशा बने रहते। और ये नील हरित शैवाल के उत्पादन हम धान के खेत में कैसे कर सकते हैं, तो छाया वाला खुला स्थान में जहाँ पानी की अच्छा प्रबंध हो, 5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 0.5 फीट गहरा गड्ढा तैयार करके दो गड्ढा के बीच में लगभग 2 फीट की जगह निरीक्षण पर आए जाए पर छोड़ना पड़ते, और उकर अलावा तहाँ फिर इला तैयार किया जा सका थे। और क्यारी में 5 इंच पानी भरे के बाद में कर बाद में गड्ढा में ये जो कर कल्चर होते तेला हम डाल के उत्पादन कर सका था। ज़्यादा होते तो खेत में भी हम सीधा सीधा धान के खेत में कहा थे पानी भर रहे थे तो हमें 4 किलो कल्चर हम डाल दें उकर बाद ले धीरे धीरे उधर ये जो नील हरित शैवाल है हर पूरा खेत डोली में बगड़ जाते फैल जाते। तो संगवारी हो वो दृष्टिकोण ले देखिए तो यह बहुत ही ज़्यादा मतलब फायदेजनक हुई और लाभकारी हुई। अब एकर बाद में ये आज के हमार कृषक प्रश्न मंच के पारी हावे। तो संगवारी हो कृषक प्रश्न मंच में आज हम प्रश्न आप लोग पूछा था नील हरित शैवाल के अंग्रेजी में काकत हैं, नील हरित शैवाल ला अंग्रेजी में काकत हैं, सही उत्तर लिख के आप लोग भेजना है ताकि हम अपन कार्यक्रम में उला हम शामिल करबो आपके सही जवाब वाला पत्र ला। तो भैया हो ये बात के विशेष ध्यान रखा जाए कि सही उत्तर आप लिख के भेजना है, काबर की चर्चा भी हमन नील हरित शैवाल के ऊपर में करे हैं और आप लोग याद भी हुई कि नील हरित शैवाल अंग्रेजी में काकत हैं, है ना। तो सही उत्तर आप लिख के भेजना है। तो भैया हो गोट बात ला देबो थोड़े से विराम और सुनाबो आप ला आज के किसान। आज के किसान हैं संगवारी हो ग्राम जोड़ा विकास खंड रायगढ़ के कृषक हैं जो मोरिंगो यानी मुनगा की खेती कर रहे थे, काबर की आज के स्थिति में मुनगा के बहुत ही ज़्यादा बाजार में मांग है। और अगर ये व्यावसायिक रूप ले खेती करत हैं जैविक तकनीक ले खेती करत हैं तो निश्चित तौर पे और बहुत ही ज़्यादा किसान मन पर फायदेजनक हो सका थे लाभकारी हो सका थे। तो आवा जानी सुनी उकर से ये गुड बात ला कि कतक सुघर ही कहते। तो ये हैं किसान ग्राम जोड़ा विकास खंड रायगढ़ के कृषक हैं गणेश ठाकुर जो मुनगा की व्यावसायिक खेती करी ने, ये विषय मैं बात कर रहा हूँ उकर से। तो आवा सुने जाओ करिए बातचीत।
1: किसान भैया हो हमारा आकाशवाणी के सार्थक प्रयासों थे उन्नतशील किसान और ग्रामीण विकास ही क्रम में आप मल्ला हमन बढ़िया उन्नतशील और सुगर सुगर किसान संगे संवारी मन कर भेंट करवात रहन। आज के क्रम में हमन के बीच में बहुत अच्छा किसान बैठे ने जिनकी मुनगा यानी मोरिंगो मुनगा कहले हमार छत्तीसगढ़ में और लगभग सभी जन जानत है, लेकिन चूंकि मुनगा मोरिंगो जो कहा जाते है अंग्रेजी में ओकर औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है। वो दृष्टिकोण ले हमर क्षेत्र के किसान संगे संगवारी मन अगर ये व्यापक रूप ले व्यवसायिक रूप ले लगात हैं तो निश्चित तौर पे लाभान्वित हो सकते हैं, वो अच्छा लाभ मिल सकते हैं। तो यही प्रयास करत हैं हमर क्षेत्र के ये किसान। आवा ऊपर से हम जानबो कि ये मुनगा के खेती के का आवश्यक तैयारी करना पड़ते और कतक एकड़ में लगाए के एकड़ तैयारी है। तो सबसे पहले भैया आप ला मुकेश चतुर्वेदी के राम राम जय जोहार।
2: राम राम जय जोहार।
1: आप अपन नाम बताओ गाँव के नाम बताओ।
2: वो नाम गणेश ठाकुर राम जुड्डा के रवैया।
1: अब विकास खंड कहाँ थे गणेश भैया?
2: रायगढ़।
1: तो गणेश भैया ये बताओ कि आपका दिन ले खेती किसानी करा था तो अभी वर्तमान में का तैयारी है और का फसल लगे?
2: अभी डोड़का लगी चलत है डोड़का हार। अब नया में अभी मुनगा के खेती के तैयारी चलत है अभी।
1: अच्छा
2: बीज ले आने हैं, अब खेत के तैयारी करबो, खाद आद गोबर खाद वगैरह जो भी लगी जैविक हिसाब से करा जाए।
1: अच्छा माने पूर्ण रूप से जैविक तकनीक में वाला तैयार करना है कहा
2: तो मोटी बिटी रही दोनों हर आधा आधा।
1: हाँ हाँ तो लगभग कतक बड़े एरिया में लगाए के विचार है आपके?
2: अभी तो ट्रायल के रूप में आधा है, फिर दशहरा में फिर एक किस्त लगा आधा आधा।
1: अच्छा
2: टोटल एक एकड़ करवो।
1: अच्छा एक एकड़ करे के विचार है।
2: हाँ
1: तो ये मूंगा फसल लगाए के विचार आपके दिमाग में कैसे है, इसका हल है?
2: ये कुछ ऐसे फसल लगे जो एक बार लगाए के बाद में हमला हर साल फसल के उत्पादन मिलते रहे।
1: हाँ हाँ
2: और फसल दूसरा तो हर तीन महीना में एक बार चार महीना में बदलना पड़ते।
1: हाँ
2: एक बार लगाए के बाद में आठ दस साल चली ऐसे सोच के चले हैं।
1: बहुत बढ़िया। वैसे भी मुनगा के व्यावसायिक मांग बहुत ज्यादा है और व्यावसायिक रूप में अगर जो खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे लाभकारी हो सकते हैं। काबर की हमारे क्षेत्र मन में ज्यादातर किसान मन कर घर मन में तो लगभग सभी जन के घर में एक टी दू पेड़ हरा बेच करते या कोलाबारी में रहते, लेकिन व्यावसायिक रूप में कोनो नहीं करेला। और आज जोन हिसाब ले बाजार में एक मांग है एक नया फसल के रूप में, और आपके सोच अच्छा लगी इसकी, एक ऐसी फसल होना जो है कि लंबा समय तक आमदनी किसान ला मिलत रहे और वो फसल के रूप में ये आप जैसे अभी चुनाव करी हम मुनगा के वो अभी काफी ज्यादा लाभदायक हो सकते है आने वाला समय में। तो एक बार कुछ तैयारी खेत के का आवश्यक तैयारी करना पड़ते है विशेष करके
2: हमला कम से कम डेढ़ फीट के डेढ़ बाई डेढ़ के गड्ढा खोदना पड़ेगा, गोबर खाद और रासायनिक खाद कुछ देना पड़ेगी थोड़े बहुत आधा आधा मान के चला। तो ये तैयारी करना गड्ढा खोद के लाइन से कतार से कतार मिला के दस बाई दस दस बाई पाँच के डिस्टेंस में रही।
1: अच्छा
2: मुनगा के पेड़।
1: हाँ
2: उस हिसाब से तैयारी करो।
1: अच्छा और आमतौर पर हर कतका दिन में तैयार हो जाए मैंने फल आना शुरू हो जाए?
2: कंपनी वाला कहे के हिसाब से तो छः महीने फल स्टार्ट हो जाते।
1: अच्छा छः महीने के अंतराल में वह फल आना शुरू हो जाएगी कहा। खैर बहुत बढ़िया बात है कि आप व्यावसायिक खेती की ओर अग्रसर हो जाते हैं हमारे क्षेत्र के किसान संगी संगवारी मन। जरूरी हो इसकी फसल परिवर्तन करके बदल बदल के लगा रिहा तेहर ज़्यादा ठीक है, और मुनगा सोचे आप तेहर बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। काबर की आज की स्थिति में बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है मुनगा के, और वास्तव में औषधि रूप में भी यार बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते, बहुत काम आते, एक वजह से भी एक मांग ज़्यादा बढ़त चले जाते। तो भविष्य में मुनगा के खेती के साथ साथ में औका तैयारी है गणेश भैया?
2: बीच में लगी बैंगन लगा लेबो या कोई छोटा फसल लगा लेबो उसमें।
1: अच्छा
2: बीच में।
1: अच्छा माने मुनगा के खेती के साथ साथ में अंतर्वर्ती फसल के भी किया जा सकता है?
2: पपीता भी हो सकते है।
1: अच्छा
2: बीच में।
1: हाँ हाँ
2: छोटे फसल मक्का ले सकत हन।
1: हाँ
2: हाँ पॉपकॉर्न जो होते।
1: हाँ हाँ
2: वो ले सकत हन।
1: अच्छा
2: छोटे फसल ले सकत हन जो।
1: हाँ हाँ
2: पेट के बढ़त ले।
1: बहुत बढ़िया माने कुल मिला के यही कि उकर सब तरीके से उपयोग किया जा सकत है। और चूंकि बड़े पौधा होते मुनगा के हर, तो अगर जो किनारे किनारे में बीच में जगह बनाते हैं अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी आप मन जैसे बैगन है या और कोई भी सब्जी फसल कमा सकत हन कहा था, या मक्का वगैरह जो है स्वीट कार्न जो लगा था नामन उकर भी खेती आसानी से किया जा सकता है, जो निश्चित तौर पर मैंने दोहरा लाभ मिले के संभावना है। वास्तव में आज की स्थिति में आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान संगी संगवारी मल्ला चाहिए कि सोच लभी अत्याधुनिक बना करके चलना है जेकर से निश्चित तौर पर लाभ हुई। अच्छा गणेश भैया उनमें सिंचाई के का साधन है और ये मुनगा की फसल में पानी की क्या आवश्यकता होते, कतका पानी लागते या कम लागते?
2: हमारे यहाँ तो ड्रिप लगाए हैं।
1: अच्छा
2: ड्रिप लगे से ड्रिप में लगाओ, बाकी ऐसे फ्लैट भी लगा सकते हैं।
1: हाँ हाँ
2: फ्लैट में क्या पानी ज़्यादा लगते हैं और लेबर की समस्या।
1: हाँ हाँ
2: अभी वर्तमान में जो है।
1: हाँ हाँ
2: तो हमारे यहाँ ड्रिप लगे से ड्रिप में लगा लेगो तो हमला फायदा हो ये पानी कम लगता है।
1: बहुत सुंदर माने ड्रिप इरीगेशन यानी टपक सिंचाई जो विधि है यह खास करके बागवानी फसल पर और ये फलदार वृक्ष जो लगा था ना मन ओकर पर बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और सबसे बेहतर होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई अंतर्गत आते हैं हर, और बहुत अच्छा बात है कि आप ड्रिप या उन्नत सिंचाई की तकनीक है तेमल्ला इस्तेमाल करा था और उन्नत विधि ले खेती किसानी करे के प्रयास करा था। निश्चित तौर पर आने वाला समय में हर आसानुकूल सफलता आप लोग जरूर मिली और मुनगा के खेती करा था एक स्थिति बहुत अच्छा बात है। और आज हमन संग संग में हमारे रेडियो को सुनिया संगी संगवारी मन लातक सुखर जानकारी दे कर सकती, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमार राम राम जय जोहार।
2: जय जोहार।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: तो संगवारी हो देखा हमें ये हमारा सुनाते रहना।

अनाज के किसान ग्राम जुड़ा के किसान रहिन हैं और बहुत अच्छा मुनगा के खेती बर तैयारी करत हैं, अपन खेत डोली बनात हैं। और हम तो चाहबो कि हमारे जागरूक किसान संगे संगवारी मान भाई बंधु मन हर टाइप के फसल के खेती किसानी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके आमदनी बढ़े और उनके जो रहन सहन के स्तर है तेमें सुधार हो, आर्थिक रूप से सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने। एक बार सरकार घलो प्रयासरत है और संगे संग में हमारे कृषि वैज्ञानिक मन भी ये चाहते हैं कि हमारे किसान संगे संगवारी मन ला आनी बानी के सुविधा मिले और लाभ मिले। भैया हो कृषि दिवस भी हो सौ जुलाई महीना में हमारे इस मास के कृषि कार्य के अंतर्गत में का हवे खास बात तो जुलाई महीना यानी खरीफ फसल बर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते। ये दौरान मानसून की बारिश के बीच में खेत की तैयारी भी है, धान के रोपाई भी है, बीज उपचार भी है और निराई गुड़ाई जैसे प्रमुख कृषि कार्य मन भी शामिल है। तो शुरुआत में तो ये है कि खेत की तैयारी के बाद में जो धान के रोपाई करता नामन तो धान के मध्यम और देर ले पकने वाला किस्म की रोपाई जुलाई की पहली पखवाड़ा तक पूरा कर लें और सुगंधित किस्म के रोपाई जो है ओला महीना के अंत तक किया जा सकत है। एक अलावा भैया हो उर्वरक और जिंक रोपाई के पहली 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर ले जिंक सल्फेट डालें और हमें ध्यान ये रखना है कि फास्फोरस उर्वरक के संग में जन मिलाना है। खरपतवार नियंत्रण तो रोपाई के 3-4 दिन के भीतर में ब्यूटाक्लोर के छिड़काव जरूर करें। और आने खरीफ फसल की बुआई भी है जिनमें कि अरहर है, मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, है ना, और बाजरा है, इमन के बुआई भी जुलाई में ही किया जाता है। और बुआई से पहले बीजोपचार बहुत आवश्यक होते हैं। संगवारी हो कोनो भी फसल की उत्पादन की और अच्छा पैदावार की गारंटी बीजोपचार ले निर्भर होते तो बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर ले बीज ला अवश्य उपचारित करना चाहिए और बाद में ही बुआई करना चाहिए। संगे संग मां मौसमी फल के जो सब्जी मन के खेती है जिनमें भाटा है, मिर्चा है, अगेती फूलगोभी की रोपाई है ओकर पर भी एकदम उपयुक्त समय है। और बरसात वाला सब्जी जैसे कि भिंडी है, लौकी है, तुरई है, दोड़का है, करेला है, इवन के भी बुआई कर सकते हैं। और बरसात में संगवारी हो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते जो नहर की बारिश के मौसम में खेत में जलभराव की स्थिति जो होते वह नहीं होना चाहिए। काबर की फसल अतकह पानी नहीं चाहिए यानी खेत डोली मन में अगर पानी भरे है तो कहीं ना कहीं नुकसान करी बनिस्बत धान के फसल छोड़ के। तो फसल ओकर पर विशेष ध्यान देना है, जल निकास के उचित व्यवस्था जरूर करना चाहिए, फसल में खरपतवार निकालत रहना चाहिए काबर की ये मुख्य पौधा के पोषक तत्व में छीन लेते हैं। संगी हो जुलाई महीना यानी खरीफ फसल पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। इनमें कई प्रकार के साग सब्जी की खेती भी होते हैं। सब्जी की खेती करने वाला किसान संगे संगवारी मन जुलाई महीना में आनी बानी के साग सालन कर सकते हैं। और जुलाई महीना ला आषाढ़ सावन भी कथन तपती हुई धरती ल ठंडा करे बर मानसून वर्षा लेके आते और मौसम सुहावना बन जाते। और ये महीना मन में जो अभी मैं कहत रहे कि जल निकास वाला व्यवस्था, जल निकास यानी सफल खरीफ फसल के आधार, अचानक भारी बारिश होने की संभावना होते तो नुकसान ले बचे पर मक्का, गन्ना, कपास, बाजरा या अन्य फसल है उनमें सिंचाई के लिए बनाए गए नाली में जल निकास के काम में लान सका था। खेत में पानी जमा हो ले फसल ला भारी नुकसान हो सका थे तो फालतू पानी ला गांव के तालाब में डालें या उगर नाली बना करके उसने ऐसी जगह में डालें जहाँ की वो नदी नाला में जाके मिल जाए, जरूरत पड़े में सिंचाई के भी दोबारा काम आए। जल प्रबंधन तो संगवारी हो अधिक पैदावार के आधार धान में रोपाई के बाद में हर हफ्ता पुराना पानी खेत ले निकाल करके ताज़ा पानी भरना चाहिए जो है कि आवश्यक होते और कम पानी उपलब्ध है तो उसका हल्का सिंचाई करके खेत ला सिर्फ गीला रखना चाहिए। नत्रजन प्रबंध तो पोषक तत्व के बचाव जुलाई महीना में संगवारी हो नत्रजन खाद दे समय वर्षा के विशेष ध्यान रखना है। जमीन में काफ़ी नमी होना चाहिए ताकि यूरिया पूरी तरीके से घुल जाए, लेकिन अधिक नमी या तुरंत बरसात हुई की स्थिति में यूरिया तब तक नहीं डालना चाहिए जब तक मौसम और ज़मीन में नमी उचित मात्रा में नहीं बने रहे, अन्यथा बहुत ज़्यादा नत्रजन पानी के संग बहा के बाहर चले जाए। ओकर अलावा भैया हो क्षेत्र के अनुसार खेती करना चाहिए जैसे कि मैदानी क्षेत्र है, खबर की सब जन के अलग

अलग जमीन के मापदंड है ओकर आधार पे। तो मैदानी क्षेत्र है तो ओकर बर धान के रोपाई हर ये महीना पूरा कर लेना चाहिए। रोपाई में 20 ले 30 दिन पुराना पौधा प्रयोग करें और पोई लाइन में काम करें। और धान में अंकुरण बाद चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार के रोकथाम बर क्लोमोरॉन, मेटसल्कुरॉन, ओलामिक्स ये जो नहीं या ये दवाई बन के छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली है तो बुआई के जुलाई के मध्य तक पूरा कर लें। औसत प्रति हेक्टेयर 80 ले 100 किलो बीज की आवश्यकता होते। संगवारी हो, भारत के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही बाजरा की बुआई कर देते हैं और बुआई के बाद जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह उत्तम रही थे। मक्का यानी मक्का की बुआई नहीं हो पाते तो शीघ्र कर लें, बुआई के 15 दिन बाद पहली निराई कर लेना चाहिए। और सोयाबीन के तो उत्तरी मैदानी और मध्य क्षेत्र में जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह के समय सर्वोत्तम होते। सोयाबीन की प्रमाणित बीज लगभग 75 ले 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर ले बोना चाहिए। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण पर अंकुरण और की स्थिति में अनुशंसित दवाई के छिड़काव करें। अरहर है तो अरहर के कम समय में पकने वाला किस्म के बुआई जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर लें। 1 हेक्टेयर में लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होते। संगवारी हो, यह ऐसे है कि जैसे खेत डोली मन में हमारा नावा पार चढ़ाए रथन तो वो स्थिति मन में बहुत ज़्यादा जरूरत है। और सरकार घलो कहते कि धान के फसल के बनिस्बत दलहन तिलहन के खेती करें तो अभी तिल के खेती कर सकत हन, नया नया पार बने रहते खेत के मेड़ मन में अरहर लगा सकत हन। और बहुत सारा किसान मन लगाते हैं या जो जमीन हर ऊपरा डिपरा रहते ते में लगा सकत हैं। तो अभी के महीना हर जुलाई के महीना हर ऐसे है कि अभी आने वानी के फसल के उत्पादन कर सकत हन हमन जो हर के निश्चित तौर पर हम किसान संगे संगवारी मन पर लाभकारी हो सकत है, फायदेजनक हो सकत है। तो समय देख के अपन अपन कृषि कार्य मन ल करत रहना चाहिए। काबर की मौसम परिस्थिति के ऊपर भी निर्भर करते, काबर कोई दिन बारिश होते कोई दिन बारिश नहीं हो। तो किसान चूंकि जागरूक हैं और आजकल तो बहुत सारा ऐसे कृषि तकनीक मन आ गए हैं, मोबाइल ऐप मन आ गए हैं जिनमें कि मौसम के पल पल के जानकारी मिलत रहते, ओकर आधार पे अपन कृषि ल बेहतर ढंग ले करे के सुनिश्चित करें। तो भैया हो, गुड बात ल देबो विराम और सुनाबो आप लखन ये छमाझम लोकगीत।

तो संगवारी हो, गीत कैसे लगे से हमला चिट्ठी पत्री और ईमेल के माध्यम से जरूर बताहा। काबर की हमन के भी प्रयास ये रहती कि हमारे किसान से के संगवारी मन संग हम बातचीत करत रहन, गोट बात करत रहन, आने वानी के सुघर मजा के गीत गोविंद भी सुनवात रहन ताकि हमारे कार्यक्रम में रोचकता बने रहे। तो भैया हो, अगला विषय है आज के टिप, जिनमें हमला चर्चा करना है कि खेती किसानी के दिन शुरू हो गए हो, खेती किसानी के बूता चालू हो, इस तहाँ जाना था कि आनी बानी के कीटनाशक लाना, दवाई लाना, राखड़ खातू लाना, ऐसे करके किसान करा लगे चल रहे। तो भैया हो, कीटनाशक तो हम लेथन, लेकिन ओकर कैसे रख रखाव करना है, कैसे ओकर सुरक्षित ढंग से उपयोग करना है, ये सब जानना समझना बहुत आवश्यक होते। संगवारी हो, कीटनाशक की सुरक्षित उपयोग करे में हमेशा प्रमाणिक दुकान से पक्का बिल लेकर के ही लेना चाहिए। काबर की होते का हड़बड़ तड़बड़ में हमन अगर को जात हन सामान लेबर तो हम ले आनथन और बाद में पता चलिस कि उहर सही नहीं है, असली नहीं है या नकली नहीं है, तो हमेशा प्रमाणिक दुकान और विश्वसनीय दुकान ले लेना चाहिए और पक्का बिल ले करके ही दवाई खरीदना चाहिए। इकर अलावा घोल बनात समय, छिड़काव करत समय में पूरा शरीर ढकने वाला कपड़ा, रबर के दास्ताना, फेस मास्क, आँखी पर चश्मा के उपयोग करना चाहिए। इकर अलावा हवा की दिशा में छिड़काव जो करते तेहुले भी नहीं करना चाहिए। इकर अलावा कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग ला अपन दिनचर्या और कृषि प्रणाली में शामिल करे बर हमला ये बात मतलब ध्यान रखना पड़ी। पहला तो यही कि पंजीकृत कीटनाशक यानी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत कीटनाशक के जो प्रतिष्ठान है वहाँ ले ही खरीदना चाहिए, जिनमें कि बिल कागज और रसीद वगैरह जरूर लेना चाहिए। और उम्मीद ये भी देखना है कि ओकर बेच नंबर का है, ओकर निर्माण तिथि और अवसान तिथि यह भी देखना है, उपयोग करे की विधि ले देखना है, लेबल पढ़ना है, डिब्बा या पैकेट में लिखे निर्देश ले पढ़ना है कि ओकर एक्सपायरी डेट और इस्तेमाल करे की विधि है। काबर की अक्सर होते का कि समय जान के मनसे ठग भी देते हैं और बहुत पुराना माल ला दे देते हैं। तो संगवारी हो, ऐसे स्थिति ले बाँचना है तेकर बार ये जरूरी हो जाते कि हमन चुन दवाई के ऊपर में लेबल लगाए हैं

केवल हम पढ़न और समझलन, ओकर बाद में ही ओकर उपयोग करन, इस्तेमाल करन। काबर की खेती किसानी में करत हन तो हमन ला दवाई जो नहीं ते हर आनी बानी के लागते और काफ़ी महंगा रहते। तो कीटनाशक मन के सुरक्षित उपयोग करे बर हमेशा ओकर डिब्बा में या पैकेट में दिया गया निर्देश रहते ओला पढ़ना चाहिए। उचित सुरक्षात्मक उपकरण, मास्क होइस, दास्ताना होइस और हवा की विपरीत दिशा में कभी भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। संगवारी हो, कीटनाशक छिड़काव अगर हम करत हन तो कर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कीटनाशक के डिब्बा पैकेट में छपे हुए लेबल हमेशा ध्यान पड़े। इनमें विषैलापन की स्तर आप देखो ही हो, में निशान रहते लाल, पीला, नीला, हरा, और वो निशान ले ये पता चलते कि वो हर कतक घातक है, कतक विषैला है। तो विषैलापन के स्तर ल जांचना समझना बहुत आवश्यक होते। तो लाल, पीला, नीला, हरा रंग ओकर उपयोग के विधि होते यानी ओकर निर्देशिका होते ओला जरूर पढ़ के करना चाहिए। सही चुनाव तो हमेशा विश्वसनीय दुकान ले कीटनाशक की दवाई खरीदें और बिल अवश्य लें। इकर संगे संग में सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट यानी कि हाथ में रासायनिक प्रतिरोधी वाटरप्रूफ दस्ताना, चेहरा में मास्क हो गए और आँखी पर चश्मा हो गए, पूरा शरीर में ढकने वाला लंबा कपड़ा यानी बाजू के शर्ट पेंट या एप्रान या फिर गाउन जो लकत हैं ओला पहनना चाहिए। इकर अलावा संगवारी हो, अगर छिड़काव करा था तो उस समय में हमारा ये विशेष ध्यान रखना है कि तेज हवा या अत्यधिक धूप या ज़्यादा बारिश के समय में छिड़काव नहीं करना चाहिए। इकर अलावा हवा की दिशा यानी हमेशा हवा की दिशा में खड़े होकर के छिड़काव करें ताकि कीटनाशक आपके शरीर में छन पड़े। और छिड़काव के दरमियान खान पान ले बाँचें। तो संगवारी हो, कीटनाशक के मिश्रण बनाते समय में या छिड़काव कर समय में कुछ भी खाना पीना या धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए। काबर की यह मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और घातक हो सकत है। इकर अलावा सावधानी बरतें तो सांद्रित कीटनाशक ला कमर के नीचे स्तर ले नीचे मिलाएं ताकि चेहरा में छींटा झन पड़े। छिड़काव के बाद में हाथ मुंह बढ़िया धो करके खेत ले लौटे के बाद में कुछ भी खाना पीना ले पहले साबुन और पानी ले बढ़िया हाथ धो के चेहरा धो करके ही कोई चीज़ खाना पीना चाहिए। फिर जो कपड़ा पहने हैं तेला बदल के अपन नवा दूसरा साफ सुथरा कपड़ा है तेला रखना चाहिए और जो छिड़काव करते समय पहने हैं तेला अलगे रखना चाहिए। उपयोग के बाद में जो मशीन के स्प्रे पंप है ओकर नोजल है वो मन लभी बढ़िया साफ सुथरा करके रखना चाहिए। और ओकर अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संगवारी हो कि कभी भी दवाई या कंटेनर जो हम छिड़काव करते हैं तो ओकर उचित निपटान करना बहुत आवश्यक होते। उचित निपटान कहले हम दवाई छिड़कें और खाली होगी शीशी या बोतल हर तो ओला हम फेंक दें कोनों में भी तो उसने नहीं करना चाहिए, बल्कि वो दूर ले जाकर मिट्टी में जमीन में गड्ढा खोद के अंदर गाड़ देना चाहिए। काबर की काकरो भी पशु मन है या लोग लेकर मन है और दूसर घर में भी ये जो कीटनाशक मन रखना है तो अगर वह सुरक्षित भंडारण करना है जहाँ की पालतू पशु के या कि फिर लोग लेकर मन के या कोनो माई लोगन मन के पहुँच ले बाहर में हो। काबर की संगवारी हो, देखा ये बूता करत जरूर है हमन लेकिन यह खतरनाक स्थिति है। तो जब कभी भी कीटनाशक के छिड़काव करन हमन तो कर सुरक्षित रख रखाव सुरक्षित उपयोग ला जरूर अपनाना चाहिए। काबर की संगवारी हो, देखा तो मनसे की जिंदगी अनमोल होते हो, हमें जरा सा भी लापरवाही नहीं चले तो सावधानी ही सुरक्षा है। तेकर स्थिति में बहुत आवश्यक होते कि सावधानी करना चाहिए। ओकर अलावा एक ठनाऊ महत्वपूर्ण बात, हर दवाई के पीछे में एक प्रतीक्षा अवधि होते। तो संगवारी हो, खास करके साग सालन के खेती हमन करथन तो सब्जी भाजी की खेती में दवाई छींचन और छवाई दवाई छींचे के बाद में ओकर जो प्रतीक्षा अवधि रहते माने उतका दिन तक हमन ला इंतजार करना आवश्यक है। काबर की बिना प्रतीक्षा अवधि ला हम जाँचे या ओकर इंतजार करे बिना हम छिड़काव कर देथन तो हर कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकत है। तो कभी भी ओकर पूरा हुए बिना ओला उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही विक्रय बर ना ही अपन के स्वयं बर। तो ये बात के विशेष ध्यान रखें। हालांकि हर दवाई मन में ये रहते कि दवाई के असर जान के ओकर किस्म जान के रहते और कि कौन में 3 दिन के रहते, कौन में 7 दिन के रहते, कौन में 15 दिन के रहते, तो वो हानिकारक के स्तर के अनुसार में रहते। तो ओकर प्रतीक्षा अवधि जब तक के पूरा ना हो जाए तब तक आपला इस्तेमाल ओला नहीं करना है। ये बात के विशेष ध्यान रखना है।

तो ओला ना तो वो सब्जी भाजी ला विक्रय करना है आपला और ना ही खुद भी इस्तेमाल करना है। जब तक प्रतीक्षा अवधि और पूरा हो जाए ओकर बाद में ही ओला आप निकाला और ओकर बाद में बढ़िया धो के साफ करके या तो बाजार में विक्रय पर भेजा या अपन खुद भी इस्तेमाल करत हन तो खुद भी इस्तेमाल करन। संगी हो ये जो कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग करत हन तेहर बहुत जरूरी है मनसे के स्वास्थ्य पर और हमारे आसपास के वातावरण पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। ओकर अलावा देखिए आप कई जन कीटनाशक छिड़काव के बाद में खेत में एक मार्किंग कर देते हैं कि ये खेत में दवाई छिंचाए है ऐसे करके, तो एक पहचान भी हो जाते तो ओकर से आदमी थोड़े सतर्क होते सावधानी होते। तो जहाँ तक संभव हो सके भैया हो कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग अपनाना चाहिए जेकर ले मानव स्वास्थ्य बढ़िया रहे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे कोनो ला तकलीफ जन हो है ना। तो ये दृष्टिकोण ले कीटनाशक के सुरक्षित और सही उपयोग सुरक्षात्मक तरीका ले अपनाना चाहिए ताकि मनसे बढ़िया ठीक ठाक रहे स्वस्थ रहे और कीटनाशक के भी अच्छा उपयोग हो सके। और बल्कि हम तो ये कथन कि ज़्यादातर ओकरेज पर कृषि वैज्ञानिक मन भी सलाह देते हैं, हम भी कार्यक्रम के माध्यम से कथन कि जैविक तकनीक है जैविक खाद ही है जैविक कीटनाशक है ते मन के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें जिनमें कि अतका कोनो प्रकार के प्रपंच की जरूरत नहीं रहे। रासायनिक कीटनाशक मन में रहते लेकिन जैविक तकनीक के लिए जो तैयार किया जा रहे थे जिनमें कि गौमूत्र है गोबर के गोबर है या के फिर लहसुन है आपके करंज है नीम है राख है, तो ऐसे बहुत सारा चीज़ हैं जो मन की देसी तकनीक लिए तैयार किया जा रहे थे कीटनाशक ते मन के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें बनस्बत रासायनिक कीटनाशक के। और बाद में नुकसान के स्तर ला जाँचे के बाद में ही कीटनाशक के चयन करना चाहिए और उकर बाद में जहाँ जब यह हो जाए तो फिर ऐसे ढंग ले कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुल मिला के है कि कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग अपनाना चाहिए। तो भैया हो गोट बात ले दिया जाए फिर विराम और सुनाया जाए आप लखनिए झमाझम लोकगीत।

तो संगवारी हो अभी हमन गीत सुनेन, और ओकर बाद में हमन के दूसर चर्चा के विषय है कि आज जैसे कि मैं आते ही आप लोग कह रहे हैं कि आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, यानी कि वन महोत्सव चलत है जो हर की 1 जुलाई ले 7 जुलाई तक चली। संगवारी हो वन महोत्सव जिकर शाब्दिक अर्थ होते वन उत्सव, भारत में मनाया जाने वाला एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव हो इस जून हर की जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाते। अब यह एक महान पारंपरिक भारतीय उत्सव हो इस जून हर की वृक्षारोपण के माध्यम ले धरती माता के सम्मान और प्रेम करे के और प्रकृति की सुंदरता के प्रति जागरूकता लोगन में पैदा करना और काम करें और पुनः उपयोग करें, यानी कि पुनर्चक्रण करें कि अवधारणा ला बढ़ावा दे बर ये आयोजन किया जाते। संगवारी हो वातावरण ला विकसित करे द्वारा करे बर भारतीय संस्कृति और विरासत ला दर्शाते। वन और महोत्सव शब्द संस्कृत भाषा बारे जुम्मे कि वन जिला वाना भी लिखा जाते और जिकर अर्थ होते जंगल, और महोत्सव यानि महान उत्सव यानि त्यौहार के संयोजन होते। उग्र स्थिति वन महोत्सव के शाब्दिक अर्थ एक महान वन उत्सव हो जुन हर वृक्षारोपण के केंद्रीय विषय के संग दुनिया भर में भारतीय समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक आयोजन हो भैया हो। कुल मिला के वन महोत्सव वृक्ष के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाए माँ और लोगन मनला पर्यावरण संरक्षण प्रयास में अधिक सक्रिय होए पर प्रोत्साहित करे माँ एक महत्वपूर्ण अवसर होते। काबर की ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके हम जलवायु परिवर्तन की प्रभाव ला कम कर सकत हन, पर्यावरण की रक्षा करे में और मानव कल्याण ला बढ़ावा दे में मदद कर सकत हन, और उकर पुनः उपयोग करे पर पुनर्चक्रण करे की उत्तम विचार वैश्विक तापमान ला कम करे माँ और प्रकृति ला संतुलित करे माँ ये वृक्षारोपण और वन महोत्सव के बहुत बड़े हाथ होते भैया हो। वन महोत्सव त्योहार एक महान वन उत्सव हो तो ये पुनर्चक्रण करे की बात है। वन महोत्सव वो लोग मन भर है जो धरती माता ले प्रेम करते हैं, और वो लोगन मन भी है जो अनभिज्ञ हैं, काबर की वो मन ला भी अच्छा पर्यावरण सुहाना मौसम सुखद जलवायु और परिस्थितिकी के बीच में प्राकृतिक संतुलन के आनंद लेने के अवसर मिलते। ये उत्सव मनाए बर भारत और ओकर बाद विश्व के हरियाली बढ़ाए में महत्वपूर्ण योगदान दे में संबंधित हावे। तो संगवारी हो भारतीय लोगन मन ला वृक्षारोपण और ओकर देखभाल में सहयोग करे बर प्रोत्साहित करना, महोत्सव के आयोजक देश में अधिक वन सृजित करके वैकल्पिक ईंधन प्राप्त होते, खाद्य संसाधन की उत्पादन बढ़ते, उत्पादकता बढ़ाए ले, खेत के चारों ओर छायादार क्षेत्र बनी, पशु मन पर चारा छाया मिली, छायादार और सुंदर परिदृश्य बनी और सूखा कम हो ही मृदा अपरदन ला रोके में मदद मिलते। तो जुलाई के पहला सप्ताह भारत के अधिकांश हिस्सा में वृक्षारोपण पर बिल्कुल उपयुक्त समय होते, काबर के मानसून के मौसम के संग मेल खाते। तो संगवारी हो ये मान के चलाओ आपकी ये वन महोत्सव के कतक ज़्यादा महत्व है, और वास्तव में सच बात है कि मनसे के जीवन में पेड़ पौधा के बिना तो बूता काम नहीं हो। संगवारी हो आप देखे हो कछु भी चीज़ करन हमन तो आज देखिए अभी गर्मी पड़त रही से तो आदमी एक घड़ी भी व्याकुल हो जाए, कोनों मेरे अगर पेड़ के छैया मिल जाते तो फिर कतका सुख लागे उमेर। तो ये दृष्टिकोण है। तो वन महोत्सव यानी वृक्ष मन के त्यौहार कहा गई से, और भारत में हर साल जुलाई की पहले सप्ताह में यानी 1 से 7 जुलाई के दौरान मनाया जाने वाला वार्षिक वृक्षारोपण हो जिनमें वन के संरक्षण पर्यावरण जागरूकता ला बढ़ावा दे बर और घटत हरित आवरण ला बढ़ाए बर के उद्देश्य लिए किया जाते। संगवारी हो वन महोत्सव की शुरुआत हो रही से 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री के एम मुंशी के द्वारा बड़े पैमाने में वृक्षारोपण ला प्रोत्साहित करे में और परिस्थिति संतुलन ला बनाए रखे में वन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाए बर किया गया रही से। ओकर बाद ले प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाए जाने वाला ये वन महोत्सव नागरिक शैक्षणिक संस्थान सरकारी निकाय गैर सरकारी संगठन और निगम में वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण ला बढ़ावा देने पर एक अभियान हो।
काबर की भारत में वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली पर सबसे बड़े जन आंदोलन में एक है, जिनमें लाखों लोग मनला हरित आवरण बढ़ाए में और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण योगदान करे पर प्रेरित करते। ये वृक्षारोपण हर यानी कि वन महोत्सव हर। तो भैया हो हमला ये जरूर ध्यान रखना है कि वन महोत्सव के दिन ये जरूर संकल्प लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। उगर साथ साथ सबले महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वृक्षारोपण करें हमन, लेकिन वो वृक्ष की सुरक्षा भी करें हमन। ये नहीं कि हम लगा दें और लगाए के बाद में भुला गए फोटो तिरादरन हो गए, नहीं, लगाए के बाद में उसका सुरक्षित रख रखाव उनमें बाढ़ के प्रबंध करना है ताकि कोई पशु या कोई नुकसान और अलझन पहुंचा सकें पौधा के बड़े हो तक, ओकर विशेष देखभाल और ध्यान देने की जरूरत होते ताकि आपकी जो लगाए हुए पौधा है वो हर सदा दिन रहे और बढ़ के। आप लोग सोचो कि आप जो पौधा लगाए हो हर कल के दिन बाढ़ जाए तो कतक आप लोग खुशी हुई। तो भैया हो ये सोच के हमला वृक्षारोपण करना है या पौधा लगाना है ताकि हमार लगाए हुए पौधा या हम ओकर फल खाई तो हमला कतक सुघर आनंद आई। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि पौधा रोपण करना है हमन ला, और पौधा रोपण करे के साथ साथ में आप खास करके देखा तो हमन करा गांव देहात है, खेत डोली है, खेत के मेड़े है, तालाब के पार है, सार्वजनिक स्थल है जहां हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। और वृक्षारोपण करे के साथ साथ में जरूरी होते कि ओकर सुरक्षा के आवश्यक उपाय है तेहुल भी हमन ला करना चाहिए, है ना। तो भैया हो ये संकल्प जरूर लें कि हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण जरूर करें हमन। भैया हो एकर बाद में चिकित्सा के प्रणेता डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की आज जयंती भी है, पुण्यतिथि भी है। देखाओ अजब संजोग है, संगवारी हूँ डॉक्टर विधान चंद्र राय 1 जुलाई 1882 और 1 जुलाई 1962 भारत के एक महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता रही हैं। पश्चिम बंगाल की दूसर मुख्यमंत्री रही हैं और उला आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता भी कहे जाते। चिकित्सा के क्षेत्र में उकर अभूतपूर्ण योगदान के याद में भारत हर साल 1 जुलाई के दिन ला राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाते। और अनोखा संयोग यही कहते रहे मैं कि डॉक्टर राय के जन्म और मृत्यु दोनों एक ही तारीख यानी 1 जुलाई के ही हो रही से।

ओकर अलावा संगवारी हूँ इला सर्वोच्च सम्मान मिले रही थी, यानी भारत सरकार के द्वारा 1961 में इला देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ले नवाजे गए रही से। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये इंग्लैंड से कठिन माने जाने वाला MRCP मेडिसिन और FRCS सर्जरी की पढ़ाई करके आ रही हैं और कई ठन डिग्री हासिल कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रहते हुए वो दुर्गापुर, कल्याणी, साल्ट लेक, विधाननगर और अशोकनगर जैसे अत्याधुनिक शहर भी बसाए रही हैं। संस्थान के न्यू वो अपन देश में चिकित्सा ढांचे ला मजबूत करे बर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और चितरंजन कैंसर अस्पताल, जादवपुर TB अस्पताल की स्थापना में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और ये तो ऐसे महान व्यक्ति हैं, तो संगवारी हो ऐसे महान व्यक्ति ला और आज के दिन उनकर जयंती भी है, पुण्यतिथि भी है, तो हम उन पुण्य स्मरण करते हुए नमन करा था भैया हो। एक अलावा आज पुरुषोत्तम दास टंडन जी की भी पुण्यतिथि है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और समाज सुधारक रहने, जो विशेष रूप ले हिंदी ला भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करे में उकर अथक प्रयास पर जाने जाते। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उकर अपार योगदान के कारण ही उला राजश्री यानी राजा और श्री के मेल की उपाधि ले सम्मानित किया गया रही से। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जो हैं इकर आज के दिन पुण्यतिथि हैं, तो उन भी हम सत सत नमन करत हन। इकर अलावा संगवारी हो अब हमन के चर्चा हर लपेटते हुए कि वर्षा दिन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या का होते आकाशीय बिजली ले बचाव के उपाय आवश्यक। संगवारी हो आकाशीय बिजली यानी आप देखे हो कि बादल गरजते और जो झटका मार के बिजली कड़क थे तड़ित जुन लगत हैं, उकर ले बचे बस सुरक्षित तरीका है कि आप तुरंत कोनो पक्का छत या बंद वाहन के अंदर चले जाए। खुले आसमान के नीचे में कभी भी नहीं होना चाहिए, पेड़ के नीचे में कभी नहीं होना चाहिए, बिजली के खंभाले दूर रहना चाहिए, तो विद्युत उपकरण ले दूर रहना चाहिए। बादल गरजे थे, बिजली चमका थे, वो स्थिति में कभी भी TV कंप्यूटर या लैंडलाइन फ़ोन ही ओकर इस्तेमाल ना करें। बिजली के तार और प्लग लछुए ले बचना चाहिए, पानी के इस्तेमाल ले भी बचना चाहिए। यानी आकाशीय बिजली पाइपलाइन के जरिए घर के अंदर आ सकत है। एकर बार तूफान के दौरान नहाना, बर्तन धोने या नल के उपयोग करे ले बचना चाहिए। खिड़की दरवाज़ा घर के जितनी भी खिड़की दरवाजा है ओकर वेंटिलेशन ला बंद करके रखना चाहिए। और कभी भी पेड़ के नीचे में नहीं छुपाना चाहिए। कभी कहा होते कि खेत डोली में काम कर रहते थे और बाद में पानी गिरे सो पेड़ के नीचे में चाहिए आगे, तो संगवारी को कभी भी पेड़ के नीचे में या कोई बिजली के खंभा के ऊपर शरण नहीं लेना चाहिए। काबर की बिजली हमेशा सबसे ऊंचा चीज में गिरते यानी ऊंचा जगह में गिरते, तो बेहतर ये है कि अगर कोनो पक्की जगह मिले तो ऐसे जगह में शरण लेना चाहिए। धातु के वस्तु ले दूर रहें, धातु के पाइप है, बाढ़ है, कृषि उपकरण है, साइकिल मोटरसाइकिल ले दूर हैं, कावर की बिजली के सुचालक होते हैं। पानी से तुरंत बाहर आएँ, अगर आप नदी नालाब या तालाब या स्विमिंग पूल में हो तो तुरंत बाहर आके सूखा स्थान में आ जाएं। तो संगवारी हो ये कुछ सावधानी है जिनला अपनाना चाहिए और सावधानी अपना तभी आप अपन जिंदगी ले बेहतर कर सका था। काबर की समय परिस्थिति ले कहा नहीं जा सके और मानव जीवन अनमोल है। फिर एक बार दोहरात हो ला और वर्षा दिन है तो हमला सावधानी अपनाना चाहिए, सुरक्षित तरीका ले जीवन निर्वहन करना चाहिए, सुरक्षित तरीके ले खेत खलिहान के बूता काम ला करना चाहिए। खास करके आकाशीय बिजली की स्थिति ले हमला बचाव के आवश्यक जो उपाय है ते मतलब जरूर पालन करना चाहिए। तो भैया हो गोड़ बात ला देवो विराम और सुनाबो आप ला फिर एक टन ये समाज हम लोकगीत।

कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण अभी हो रहा था। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लकी अली के गाए हुए इस गीत को। रचना है अली असलम की।

अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत में अभी आपने सुना नफीस आलम की रचना को पंकज उधास के स्वर में। पंकज उधास के गाए हुए इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डर का ये गीत। स्वर है उदित नारायण का, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीत है शिवहरि का।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत बागी। आइए, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर के स्वर में। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंत में आइए, हम आपको सुन पा रहे हैं फिल्म गोपी किशन का ये गीत। आवाजें पूर्णिमा और कुमार सानू के हैं, समीर की शब्द रचना है, संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: पूर्णिमा और कुमार सानू के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है, उत्तर

0: प्रदेश में कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
4: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: आकाशवाणी ने हमेशा से अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: संघर्ष फिल्म का ही गाना आप सुन रहे थे, सोनू निगम का गाया हुआ। समीर ने गीत लिखा था और जतिन ललित ने संगीत से सवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना साया फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत से सवारा है MM क्रीम ने।

आइए अब सुनते हैं खिलाड़ी फिल्म का गाना अभिजीत और अलका याग्निक का गाया हुआ। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, सुरों में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे समरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए, पहले हम आपको सुनवा रहे हैं इज्जत फिल्म का ये नगमा। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। साहिर की शब्द रचना है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: गोरा और काला, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में, आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: गीत के बोल और धुन सुन करके समझ गए होंगे आप, इस गीत को हमने लिया है फिल्म गुरु से। आप खुशाल और उदय मजुमदार के हैं। गुलजार की शब्द रचना है, संगीत है AR रहमान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आइए इस पर गीत सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स।

0: ऐप आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं जॉली मुखर्जी के गाए हुए इस गीत को। रचना है संतोष आनंद की, संगीत आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम संगीत।

जॉली मुखर्जी के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता सुन रहे सभी साथियों को आपके रेडियो दोस्त कृष्ण कुमार साव का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में ही हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र नाथ रहबर की रचना को जगजीत सिंह के स्वर में

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: जवान थी, तारे टिमटिमा रहे थे, या यूं कहें तारे।
2: कार्यक्रम में आइए, अब हम आपको सुन पा रहे हैं अस्तित्व दी बैंड ग्रुप के गाए हुए इस गीत को।
1: कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी याद नहीं कि कल रात कुछ हुआ भी या नहीं। सोचा चलो लिख डालूं अपनी ही रात की दास्तान।

story goes further. सुबह होती है, उसे कुछ कुछ याद आता है, थोड़ा थोड़ा परछाइयों में कुछ नजर आता है कि पिछली रात

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया। दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

कार्यक्रम गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता में लीजिए। आप सुनिए चंदन दास के गाए हुए इस गजल को। शायर हैं इब्राहिम अश्क।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम के अंत में आइए, अब हम आपको सुन पा रहे हैं उदित नारायण के गाए हुए इस गीत को। रचना है फैज अनवर की, संगीत है निखिल विनय का।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से

0: And in men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chestellor Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब संपन्न होता है। कल के प्रसारण के साथ सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।